0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: इसराइल में इतलाफ के लीडर यार गुलाम ने यह बयान दिया है कि इसराइल फौज वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के गैर जिम्मेदाराना पॉलिसियों की कीमत चुका रहे हैं। डेमोक्रेट्स पार्टी के सरबराह गुलाम ने इतवार के रोज एक्स प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई एक वीडियो में कहा, नेतन्याहू की पॉलिसियां जिनमें फौजी सर्विस से मुस्तस्ना अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी शामिल हैं, जिन्हें उन्होंने यहूदी दहशतगर्द करार दिया, इसराइल फौजों पर भारी बोझ डाल रही है। उन्होंने मजीद कहा, नेतन्याहू बेजलेल स्तोमरिच इतमार बिन गफीर हुकूमत मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौजों को बेयाद मददगार छोड़ रही है। गुलाम ने अपनी बात इस जुमले पर खत्म की, नेतन्याहू हम इंतखाबात में आपकी जगह लेने आ रहे हैं। हफ्ते के रोज गुलाम ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में खबरदार किया था, नेतन्याहू हुकूमत ने मकबूजा मगरबी किनारे को एक बारूद का ढेर बना दिया जो इसराइल की सलामती के लिए खतरा है। गुलाम ने यह भी वाजह किया, इंतहा पसंद आबाद का महीनों से बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत कशीदगी को हवा दे रहे हैं, हालात को खराब कर रहे हैं और इसराइल फौज और मुल्क को एक वसी तर तसादम की जानब धकेल रहे हैं।
2: रूसी हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता शब यूक्रेनी हमले में रूस के रोस्तोव ऑन डोन और बेलगोरोद इलाके में कम से कम दो अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। बेलगोरोद इलाके के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर ने रूसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैक्स पर जारी किए गए एक बयान में बताया है कि एक औरत कनपट्टी पर शैल के टुकड़े लगने से जख्मी हो गए, जिससे जाए वकुआ पर तिब्बी इमदाद दी गई। बयान के मुताबिक बाकी जख्मी अफराद को एम्बुलेंस अमले ने हस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका तिब्बी इलाज जारी है। इलाकाई हुकाम के मुताबिक हमले के बाद रिहायशी इमारत के कई फ्लैटों और 15 से ज्यादा पार्क शुदा गाड़ियों में आग लग गई। फायर फाइटर्स ने शोलों को बुझाया, जबकि एक निजी घर जुजवी तौर पर तबाह हो गया और कई इमारतें नुकसान का शिकार हुईं। हुकाम ने कहा कि इजाफी नुकसान का तखमीना जारी है। दूसरी जानब जनूबी रूसी शहर रोस्तोव ऑन डोन पर एक फिजाई हमले में दो अफराद हलाक हो गए हैं।
1: हुकाम ने बताया, पीर की अलसुब फिलपाइन के महकमा इंसाफ के दाखिली दरवाजे के करीब खुद साख्ता बम फटा। यह वाकया चंद घंटे पहले पेश आया, जब मुल्क के सेनेट के करीब एक मुश्तबे नकारा आले का तयन हुआ। इस धमाके में कोई जान नुकसान नहीं हुआ।

0: दूसरे मुश्तबा बम का तयन उसी दिन सदर फ्रेंडेंट मार्कोस जून की सालाना स्टेट ऑफ द नेशन तकरीर से चंद घंटे पेशतर हुआ। कौमी पुलिस के सरबरान ने पीर को सहाफियों से कहा इस बात का बड़ा इम्कान यह इहतमाल है दोनों वाकयात मरबूत है। उन्होंने कहा अगरचे पुलिस के पास बम धमकियों हकीकी बम धमाकों दीगर के खिलाफ हंगामी मनसूबे मौजूद थे तहम कुछ चीजें हमारे काबू से बाहर हो गई। सुबह सवेर होने वाले धमाके की तफसीलात सामने नहीं आई। मनीला पुलिस के तर्जमान फिलिप अनिस ने कहा है कि हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि धमाका वसी पैमाने का या महदूद सतह का था।
1: अमरीका में फूड फेस्टिवल के दौरान मुसल्ह हमले में दो अफराद हलाक और पांच जख्मी हो गए। वाशिंगटन रियासत के शहर सियाटल में मुनक़िदा रिवायती बाइट ऑफ सियाटल फूड फेस्टिवल में फायरिंग का यह वाकया पेश आया। स्पेस नीडल के करीब वाकई इवेंट एरिया में मकामी वक्त के मुताबिक शाम तकरीबन 6 बजे होने वाले इस हमले में इब्तदाई मालूमात के मुताबिक दो अफराद हलाक हुए जबकि एक की हालत नाजुक है और मजमूई तौर पर पांच अफराद जख्मी भी हुए हैं। वाकई के फौरन बाद बड़ी तादाद में पुलिस और इमदादी टीमों को इलाके में रवाना कर दिया गया और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इस फेस्टिवल ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया है जहाँ लाखों लोग मौजूद थे। रियासती गवर्नर बॉब फर्गुसन ने ऐलान किया है कि मकामी पुलिस की मदद के लिए खसूसी ऑपरेशंस टीमों को इलाके में तैनात कर दिया गया है। हमलावर को गिरफ्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है।
0: तेल की मंडी में शदीद गिरावट देखी जा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते मशरिक वस्ती में बढ़ती हुई कशीदगी आपने और मस में तरसील के खदशात के बिना पर ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 की सतह के करीब पहुंच गई थी। तमाम हफ्ते के पहले कारोबारी रोज इसमें तेज से कमी का मुशाहदा हुआ है। जुमे के दिन $91.68 पर बंद होने वाला ब्रेंट ऑयल आज 5.5% की बड़ी गिरावट के साथ $86.61 पर फरोख्त हो रहा है। कीमतों में इस मंदी की अहम वजह अमरीका का वो इलान है जिसमें उसने सफारती कोशिशों को मौका देने के लिए ईरान के खिलाफ फजाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोकने का कहा है जबकि इस मामले में चीन का फाल किरदार भी असरअंदाज हुआ है।
1: और तुर्की की खवातीन की कौमी वॉलीबॉल टीम ने चीन के खसूसी इंतजाम इलाके मकाओ में ब्राज़ील को एक के मुकाबले में 3-0 देकर अपना दूसरा FIVB वॉलीबॉल नेशनल लीग का टाइटल जीत लिया है। 2023 से अब तक हेड कोच डेनियली सांतरेली का यह तीसरा गोल्ड मेडल है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने टीम को फ़ोन करके मुबारकबाद दी और उनकी इस तारीखी कामयाबी और तुर्की का सर फख्र से बुलंद करने पर उनकी तारीफ की। इस फतह ने बैनुल अक्वामी वॉलीबॉल के स्टेज पर तुर्की के सुनहरी दौर को मजीद मजबूत कर दिया है। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।

छोटे छोटे आशियाने भी नजर आएंगे। छोटी छोटी राहदारियों, झरोकों और कभी कभी चोटी पर एक छोटे से गुंबद के साथ ये आशियाने नहीं, हकीकी मानों में परिंदों के लिए बनाए गए छोटे छोटे महल नुमा घर हैं, गोया आसमान के लिए वक्फ किए गए महल। उस्मानी माशरे ने परिंदों को सिर्फ एक जानदार नहीं समझा, बल्कि इन्हें अल्लाह की बेजुबान मखलूक और आसमान की जीनत करार दिया। इसीलिए सख्त सर्दियों में इन्हें यकबस्ता हवाओं से बचाने और तूफानों में बेघर रहने से बचाने के लिए इमारतों के महफूज तरीन हिस्सों में ये हसीन पनागाहें तामीर की। ये घर सिर्फ पत्थर से बने हुए घोंसले ही नहीं थे, बल्कि इनके पीछे वक्फ का एक अजीम तसव्वुर कार फरमा था। बाज वक्फ नामों में मौसम सरमा के दौरान परिंदों के लिए दाने दुनके की बाकायदा फराहमी के लिए अतियात मुख्तस करने का भी जिक्र मिलता है। इस्तांबुल के इलाके उस्कुदार में वाक़ यानी वालदा जामे मस्जिद, अयासमा जामे मस्जिद और अयूब महल्ले में शाह सुल्तान कुलिया की दीवारों पर बनाए गए परिंदों के ये नफीस घर इंसान के सिर्फ नौ इंसानी का ही नहीं, पूरी कायनात का भी मकरूस होने के नुक्ता नज़र के साथ अदा करदा कर्ज की वजह से संग मरमर पर कंदा शुक्र नामों की हैसियत रखते हैं। परिंदों का घर वो मुकाम है जहाँ ज़ाती मलकियत ख़त्म हो जाती है और दूसरों को ज़िंदा रखने और संभालने की ख्वाहिश अपनी बुलंद तरीन मंजिल पर पहुँच जाती है। और जब हम आसमान से नज़रें हटाकर ज़मीन के गर्द आलूद और दुश्वार गुजार रास्तों की तरफ पलटते हैं तो इंसानी ज़मीर की एक और यादगार हमारे सामने आती है। इसका नाम है इस्तराहत के पत्थर। पुराने ज़माने में माल बरदारी इंतहाई पुरमशक्क़त ज़रिया रोज़गार था। माल उठाकर शहरों के दरमियान सफ़र को सब्र व इस्तक़ामत का एक कड़ा इम्तिहान समझा जाता था। इस्तांबुल के हम माल यानी माल बरदार और मुसाफिर दोनों को थकन से निढाल करके सांस लेने पर मजबूर कर देने वाले इंतहाई सीधी चढ़ाइयों और ढलवानों वाले या फिर अनातोलिया के तवील और सुनसान रास्तों पर किसी वक्फ की सरपरस्ती में आराम के पत्थर नस्ब किए जाते थे। ये पत्थर तकरीबन एक मीटर बुलंद होते थे ताकि कोई हमाल या मजदूर अपनी पीठ पर लदा हुआ भारी बोझ या टोकरा किसी दूसरे की मदद के बगैर इन पर रख सके और दोबारा सफ़र शुरू करने से पहले सुकून से सांस लेकर अपनी कुव्वत बहाल कर सके। वक्फ के रिकॉर्ड इस बात की गवाही देते हैं कि इन पत्थरों की सफाई भी इबादत के जज्बे से की जाती थी। वही वक्फी तहजीब जो सरेरा बनाए गए चश्मों तक मीलों दूर से पानी पहुंचाती थी और वीरान मंजिलों में मुसाफरों के लिए कारवान सराय तामीर करती थी, इसने सफ़र की मुशक्क़त को शफ़क़त और रहमत के सुकून में बदल दिया। कभी किसी मुसाफिर के माथे का पसीना खुश करने वाली ठंडी हवा दरअसल इस नेक दिल इंसान के हाथ की मानद होती थी जिसने सदियों पहले इसी मुकाम पर साया फराहम करने का इंतज़ाम किया था। इस निज़ाम में कोई भी अजनबी नहीं था। सफ़र पर निकलने वाला हर इंसान वक्फ की शफ़क़त के साए तले एक मुअस्सस मेहमान शुमार होता था। लेकिन वक्फ की तहजीब सिर्फ जिस्म और जानदारों की ज़रूरियात तक महदूद नहीं थी, बल्कि इसने इंसान को इंसान बनाने वाले सबसे कीमती जौहर यानी इल्म को भी हमेशा के लिए महफूज कर दिया। वक्फ के तामीर करवाए हुए मदारस और कुतुबखाने इस हकीकत की रोशन दलील थे कि इल्म खरीदो फरोख्त की चीज़ नहीं, काबिलियत हर चीज़ से बरतर है और इल्म हासिल करना किसी ख़ास तबके का नहीं बल्कि हर इंसान का बुनियादी हक है। जो तालिब इल्म किसी मदरसे में कदम रखता उसके लिए हर चीज़ वक्फ कर दी जाती थी। इसका खाना, रिहाइश, किताबें, बल्कि ईद के मौका पर दिया जाने वाला खर्च भी वक्फ की जिम्मेदारी होता था। वक्फे कुतुबखानों के असूल और ज़वाबत आज भी हमारे लिए सबक आमूज हैं। मिसाल के तौर पर क्योप्रुलु कुतुबखाना और रागब पाशा कुतुबखाना के वक्फ नामों में ये तक तफसील से दर्ज है कि किताबों को नमी से कैसे महफूज रखा जाए, कुतुबखाने के निगरान को कितनी तनख्वाह दी जाए और तलबा के सुकून से मुतालिया करने के लिए चिराग या मोमबत्तियाँ किस तरीके से रोशन रखी जाएँ। इनमें ये हदायत भी दर्ज थी कि दरवाजे तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक इल्म के हर तालिब के लिए खुले रहें और किताबों को नमी से महफूज रखकर इज्जत व एहतराम के साथ संभाला जाए। बाज़ वक्फ नामों में एक नहायत मानी खेज शर्त भी दर्ज थी, इस कुतुबखाने की कोई किताब किसी सूरत बाहर नहीं ले जाई जाए, अलबत्ता जो भी चाहे अंतर बैठकर जितना चाहे मुतालिया करे और इससे फ़ायदा उठाए।
یہ اصول دراصل اس بات پر مہر ثبت کرنے کے مترادف تھا کہ علم چند ہاتھوں کی ملکیت نہ بن جائے بلکہ پورے معاشرے کی مشترکہ دانش بن کر باقی رہے۔ مدارس میں منعقدہ مجالس درس، استاد کی تنخواہ اور طالب علم کی دوات کی روشنائی تک سب کچھ وقف کی آن

0: आमदनी से पूरा किया जाता था। यूं इल्म ना किसी सियासी ताकत के सामने झुकता था और ना ही किसी माली दबाव के आगे। इसका मकसद सिर्फ हक की तलाश और हकीकत की खिदमत बन जाता था। वक्फ के जरिए इल्म आज़ाद हुआ और दौलत व मलकियत इल्म की खिदमत गुजार बन गई। वकूफ की रहमत और शफकत का दायरा सिर्फ एक नन्हे परिंदे के घोंसले तक महदूद नहीं रहा। इस सरजमीन पर शफकत और मेहरबानी की एक और मिसाल भी कायम हुई जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया। वही इदारा जिसका जिक्र पहले हिस्से में हुआ था, यानी गराइब खाना लखलकान, जिसे आम जुबान में जख्मी और बेसहारा लखलकों का घर कहा जाता है, 19वीं सदी में जिला बुरसा में कायम होने वाला ये मुनफरिद वक्फ उन महाजर लखलक परिंदों की देखभाल, इलाज और खुराक के लिए मखसूस था जो सफर के दौरान थक कर गिर जाते, जख्मी हो जाते या जिनके पर टूट जाते थे। जिला बुरसा के अरगांदी पुल के करीब एक सादा से घर में कायम होने वाला ये वक्फ इंसानी ज़मीर और रहमदिली की बुलंद तरीन मिसालों में से एक था। इस जज्बे ने यह बावर कराया कि रहमत और शफकत सिर्फ इंसान के लिए ही मखसूस नहीं, बल्कि आसमान के जख्मी मुसाफरों के साथ भी शफकत और हमदर्दी इंसान पर एक कर्ज है। चनाचे जख्मी लखलकों के जख्मों पर मरहम रखा जाता है, इनकी देखभाल की जाती और जब तक वो दोबारा परवास के काबिल न हो जाते इन्हें इज्जत और एहतराम के साथ पनाह दी जाती थी। उस दौर के अदीबों और सयाहों ने हैरत से लिखा है कि बुरसा के लोग अपने हाथों से जख्मी लखलक परिंदों को दाना खिलाते और उस वक्फ के दरवाजे पर गोया रहमत के मुहाफिज बनकर खड़े रहते थे। गराइब खाना लखलकां इस गहरी निगाह का नाम है जो आसमान की तरफ देखते हुए सिर्फ बादलों को नहीं बल्कि एक जख्मी पर को भी देख लेती थी। एक लखलक परिंदे का टूटा हुआ पर एक मुसाफिर के लिए संगे इस्तराहत और आवाम के जहनों को मुनव्वर करने के लिए एक किताब, ये सब एक ही चश्माए रहमत से सैराब होने वाले अजीम शान दरख्त की शाखें हैं। वक्फ उस गहरे एहतराम का नाम है जो दुनिया की हर मखलूक, हर लम्हे और हर नेमत के लिए महसूस किया जाता है। वही रूह जिसने आसमान के परिंदों के लिए महल नमा आशियाने तामीर किए, जख्मे लखलकों का इलाज किया, सफर की मशक्कत से थके हुए हमालों के लिए आराम के पत्थर नसब किए और नौजवान अजहान को किताबों की रोशनी से मुनव्वर किया, इसने दौलत को जमा करने के लिए नहीं बल्कि बांट कर हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल किया। आज हम इन यादगारों को देखते हैं तो दर हकीकत सिर्फ माजी को नहीं पढ़ते बल्कि इंसानियत के बावकार मुस्तकबिल की झलक भी देखते हैं, यानी जिंदगी बांटो ताकि खुद जिंदा रहो और इल्म हासिल करो ताकि हकीकत को पहचान सको। जानदारों, मुसाफिरों और इल्म के लिए वक्फ एक अजीम जिंदगी के नकुश के ताकुब में हम आज की सोबत के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं, लेकिन वक्फ का समंदर अभी भी बेकनार है। आइंदा की सोबत में हम इन दास्तानों पर बात करेंगे जहाँ पानी, मौसीकी और मोहब्बत खुद शफा का जरिया बन जाते हैं। रहमत और दानाई के सफर में हमारे साथ रही। जब एक हाथ आगे बढ़ता है तो एक जिंदगी बदल जाती है और कहानी मुकम्मल हो जाती है। अगले हफ्ते देने वाले हाथ की कहानी में दोबारा मुलाकात की ख्वाहिश के साथ अपनी मेज़बान मिसबाह शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
1: देने वाले हाथ की कहानी।